जिस पर रे वो फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले अंचिंगों ने वखला वक्त बा वेंट इन लो बगले रो तजा शेह बाके मुग अब्दुबा पाप देम बन्यो के अमल फी चितू बा इतालिया उस दो अल्लाह के बामों ने भी

जिस पर रे हुआ फले के हम लाए वरना ला दिमाग ले अंचिंगों ने वखला वक्त बा वेंट इन लोग बगले रोट जा शेह बाग के मुग अब बाग पाप दे मन्यो के अमल फी की तू बा इतालिया उस दाला के बामों ने उस दाला